0: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप,
1: जैसे जल में कमल लेप,
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख,
1: जैसे सूर सर्व को सुख,
0: ब्रह्म ज्ञानी का दृष्ट समान,
1: जैसे राज रंग को लागे दुलभवान,
0: ब्रह्म ज्ञानी का तीर्ज एक,
1: जो बसदा को खोदे को चंदन लेप,
0: ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाव,
1: नानक जो भाव का सह स्वभाव,
0: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला,
1: जैसे मैल न लागे जला,
0: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए परगास,
1: जैसे दारू परे आकाश,
0: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान,
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान,
0: ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा,
1: मन अपने है सब दे नीचा,
0: ब्रह्म ज्ञानी से जन पै,
1: नानक जिन प्रभाव करे,
0: ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना,
1: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी जीना,
0: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया,
1: ब्रह्म ज्ञानी ते कुछ बुरा न पया,
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी,
1: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी,
0: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता,
1: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता,
0: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान,
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान,
0: ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस,
1: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश,
0: ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाह,
1: ब्रह्म ज्ञानी परोपकारो महा,
0: ब्रह्म ज्ञानी का नाही तंदा,
1: ब्रह्म ज्ञानी ले दावत बंदा,
0: ब्रह्म ज्ञानी के होए सो भला,
1: ब्रह्म ज्ञानी सो फल भला,
0: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार,
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार,
0: ब्रह्म ज्ञानी का एक रंग,
1: ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग,
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार,
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार,
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा सत जागत,
1: ब्रह्म ज्ञानी अहम बुद्ध त्यागत,
0: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद,
1: ब्रह्म ज्ञानी के घर सदा आनंद,
0: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास,
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश,
0: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता,
1: ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता,
0: ब्रह्म ज्ञानी के होए अचिंत,
1: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत,
0: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्याप,
1: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप,
0: ब्रह्म ज्ञानी का दर्द बड़ भागी पाईया,
1: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए,
0: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर,
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर,
0: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है,
1: ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे,
0: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद,
1: ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश,
0: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अदाखर,
1: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर,
0: ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने,
1: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने,
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार,
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार,
0: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का कर्ता,
1: ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे निमरता,
0: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता,
1: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता,
0: ब्रह्म ज्ञानी नाथ का नाथ,
1: ब्रह्म ज्ञानी का सब प्रहात,
0: ब्रह्म ज्ञानी का सगलकार,
1: ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार,
0: ब्रह्म ज्ञानी की शोभा।

0: राष्ट्रपति।
1: संत के दुखन यार जा कटै,
0: संत के दुखन जमते नहीं छुटै,
1: संत के दुखन सुख सब जाए,
0: संत के दुखन नरक में पाए,
1: संत के दुखन मत होए मलीन,
0: संत के दुखन शोभा देहीन,
1: संत के हते कौ रखे न कोए,
0: संत के दुखन तान भ्रष्ट होए,
1: संत कृपाल कृपा जे करै,
0: नानक संत संग निंदक भीतरै,
1: संत के दुखन ते मुख पवै,
0: संतन के दुखन काग जो नवै,
1: संतन के दुखन सर्प जोन पाए,
0: संत के दुखन त्रिगत जोन करमाए,
1: संतन का दुखन तृष्णा में जड़ै,
0: संत के दुखन सब को चलाए,
1: संत के दुखन तेज सब जाए,
0: संत के दुखन नीच निचाए,
1: संत दुखी का था को नाहे,
0: नानक संत भावे ता वो पी गत पाहे,
1: संत का निंदक महात ताई,
0: संत का निंदक खिंटिकिन न पाई,
1: संत का निंदक महात यारा,
0: संत का निंदक परमेश्वर मारा,
1: संत का निंदक राज तेहीन,
0: संत का निंदक दुखी यार दीन,
1: संत के निंदक को सर्व रोग,
0: संत के निंदक को सदा बजोग,
1: संत की निंदा दोख में दोख,
0: नानक संत भावे ता उसका भी हो मोख,
1: संत का दुखी सदा पवित्र,
0: संत का दुखी किसी का नहीं मित,
1: संत के दुखी को डान लाग,
0: संत के दुखी को सब त्याग,
1: संत का दुखी महाअहंकारी,
0: संत का दुखी सदाभकारी,
1: संत का दुखी जन्म मरा,
0: संत की दुख न सुख ते डराए,
1: संत के दुखी को ना उठाओ,
0: नानक संत भावे तन लय मलाए,
1: संत का दुखी अध बीज ते टूटे,
0: संत का दुखी किते काज न भूल जाए,
1: संत के दुखी को ध्यान परमाई,
0: संत का दुखी उजड़ पाई,
1: संत का दुखी अंतर ते थोथा,
0: जो सास बिना मृत गिलो था,
1: संत के दुखी की जड़ कुछ ना है,
0: अपन बीज आप ही खाहे,
1: संत के दुखी को बन रखन हार,
0: नानक संत भावे तन लय उबार,
1: संत का दुखी एवं बिल लाए,
0: जो जल भी उन मछली दर बढ़ाए,
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजा,
0: जो पाप की धनी द्रापे,
1: संत का दुखी छुटे अकेला,
0: जो बुआड़ दिल खेत माही दुहेला,
1: संत का दुखी धर्म ते रहत,
0: संत का दुखी सद मिथ्या कहत,
1: कीर्तन निंदक का तो रहे पया,
0: नानक जो तिस भावे सोई थिया,
1: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए,
0: संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए,
1: संत का दुखी सदा सहकाई है,
0: संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है,
1: संत के दुखी की पुजे ना आसा,
0: संत का दुखी उठ जले निराशा,
1: संत के दुख ना त्रिष्टे कोए,
0: जैसा भावे तैसा कोई होए,
1: प्या कीर्तना मेटे कोए,
0: नानक जाने सच्चा सोए,
1: सब काट तिसके ओ करने हार,
0: सदा सदा तिसको नमस्कार,
1: सब की उस्तत करहो दिन रात,
0: तिसे त्या वो सात ग्रास,
1: सब कुछ बरते तिसका किया,
0: जैसा करे तैसा को थिया,
1: अपना खेल आप करने हार,
0: दूसर कौन गए विचार,
1: जिसनु कृपा करे तिसे अपन नाम दे,
0: बड़ भागी नानक।

0: अस्पदी
1: मानक कीट एक बिरथी सब जान
0: देवन को एक भगवान
1: लिखे दिए रह गाए
0: भोर न तिस न लागे आए
1: मारे राखे एको आप
0: मानुख कह किस नाही आत
1: तिसका हुकुम बूझ सुख होए
0: तिसका नाम रख कंठ परोए
1: सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए
0: नानक बिघन न लागे कोए
1: उस्तत मन में करण रंकार
0: करमन मेरे सत व्यवहार
1: निर्मल रसना अमृत पियो
0: सदा सुए ना कर नह जियो
1: नैनो पे ठाकर का रंग
0: सार संग बिन से सब संग
1: चरण चलो मार्ग गोविंद
0: मिटे पाप जपिए हर बिंद
1: हर हर कर्म सर्वन हर कथा
0: हर दरगह नानक जल मथा
1: मठ भागी ते जन जग माहे
0: सदा सदा हर के गुण गाहे
1: राम नाम जो करे विचार
0: जितन भंत गनी संसार
1: मन तन मुख बोले हर मुखी
0: सदा सदा जान हूं ते सुखी
1: एको एक एक पहचान
0: है तुद की ओ सोझी जाने
1: नाम संग जित का मन मानिया
0: नानक तिन निरंजन जानिया
1: गुर प्रसाद आपन आप सुझे
0: तिसकी जान नहु तृष्णा बुझे
1: साध संग हर हर जस कहत
0: सर्व रोग दे ओ हर जन रहत
1: अंदन कीर्तन केवल बखियान
0: गृहस्थ मह सोई निर्वाण
1: एक ऊपर जिस जन की आसा
0: तिसकी कटिया जम की फासा
1: और ब्रह्म की जिस मन भूख
0: नानक तिसे न लागे दुख
1: जब हर ब्रह्मन चित आवा
0: सो संत सुहेला नहीं डलावा
1: जिस प्रभु अपना कृपा करे
0: सो सेवक कह के दे डरा
1: जैसा सात ऐसा दृष्टाया
0: अपने कार्य में आप जमाया
1: सोधत सोधत सोधत सीजिया
0: गुर प्रसाद दत्त सब बुझिया
1: अब देखो तब सब कुछ मूल
0: नानक सो सुखम सोई अस्तूल
1: न कह जन्म न कुछ मरा
0: आपन जल ते आप ही करे
1: आवन जावन दृष्ट अन दृष्ट
0: आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ
1: आपे आप सकल मैं आप
0: अनक युक्त रज दाप दाप
1: अविनाशी नाही कुछ कांड
0: धारण धारे हो ब्रह्मांड
1: अलख अभेव पुरख प्रताप
0: आप जपाए त नानक जाप
1: जिन प्रभ जाता सो शोभावंत
0: सगल संसार उदरे दिन मंत
1: प्रभु के सेवक सगल उदारन
0: प्रभु के सेवक दुख बजारन
1: आपे मेल लै कृपाल
0: गुरु का शब्द जप भय निहाल
1: उनकी सेवा सोई लागे
0: जिसनु कृपा करे बुढ़ भागे
1: नाम जपत पावे विश्राम
0: नानक दिन पुर को उत्तम करमान
1: जो कुछ करे सो प्रभु के रंग
0: सदा सदा बसे हर संग
1: सहस वाय होवे सो होए
0: करने हर बजाने सोए
1: प्रभु का किया जन्मीठ लगाना
0: जैसा सत ऐसा दृष्टाना
1: जिस ते उपजे तो समाए समाए
0: ओ

0: साथ न चल बिन भजन बिकया
1: सगलीशार
0: हर हर नाम कमावना नानक तन सार अष्टपदी
1: संत जना मिल करो विचार
0: एक सिमर नाम आधार
1: अवर पावसा मेत विसार हो
0: चरण कमल रिद मह उद्धार हो
1: करण कारण सो प्रभु समरथ
0: जड़ कर गहो नाम हर बात
1: तन संच हो वो भगवंत
0: संत जना का निर्मल मंत
1: एक आस रखो मन माहे
0: सर्व रोग नानक मिट जाहे
1: जिस धन को चार कुंठ उठता वह
0: तो धन हर सेवा दे पाव है
1: जिस सुख को नित बाछे मीत
0: सो सुख साधु संग प्रीत
1: जिस शोभा को करह भली करनी
0: सा शोभा आज हर की सरनी
1: अनको उपावी रोग न जाए
0: रोग मिटे हर अवखद लाए
1: सर्व निदान में हर नाम निदान
0: जप नानक दरगह प्रवान
1: मन पर बोधो हर के नाए
0: दह दिस धाव धा बैठाए
1: ताको बिघन न लागे कोए
0: जागे हृदय बसे हर सोए
1: कलता ती ठंडा हर नाम
0: सिमर सिमर सदा सुख पाओ
1: पावन से पूर्ण होए आस
0: भगत भाए आत्म प्रगास
1: चित घर जाए बसे अविनाशी
0: ओहो नानक काटी जम फांसी
1: अंत विचार कहे जन

0: गुण गावो
1: सास सास प्रभु तुम्हें
0: चरण
1: ध्यावो,
0: कमल सो लागे प्रीत।
1: भगत करूं प्रभु की नित नीत,
0: एक ओट एको आधार
1: नानक मांगे नाम प्रभु सार।
0: प्रभु की दृष्ट महा सुख होए,
1: अरस पावे बिरला कोए,
0: जिन चाकिया से जन त्रिपतान ने
1: पूर्ण पुरुष नहीं डोला ने,
0: सो भर भरे प्रेम रस रंग,
1: उपजे जाओ साध के संग,
0: हरे सरन आन सब त्याग,
1: अंतर प्रगास अनदिन निवलाग,
0: बट भागी जपिया प्रभु सोए,
1: नानक नाम रते सुख होए,
0: सेव की मनसा पूरी पई,
1: सतगुर दे निर्मल मत लई,
0: जन को प्रभु होयो दयाल,
1: देव की नो सदा निहाल,
0: बंधन काट मुक्त जन पाया,
1: जन मरण दुख भ्रम गया,
0: एक पुन्नी श्रद्धा सा पूरी,
1: प्रभु रहा सत्संग जूरी,
0: जिसका साधन लिया मिलाए,
1: नानक भगति नाम समाए,
0: सो क्यों बिसरा जे काल न पाने,
1: सो क्यों बिसरे जे किया जाने,
0: सो क्यों बिसरे जिन सब कुछ दिया,
1: सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया,
0: सो क्यों बिसरे जे अग्न में राखा,
1: गुरु प्रसाद को बिरला लाखे,
0: सो क्यों बिसरे जे बेखत काढ़ा,
1: जन्म जन्म का टूटा गढ़ है,
0: गुरपुरे तत हे बुझाया,
1: प्रभु अपना नानक जन त्याया,
0: साजन संत करो एहो काम,
1: आन त्याग जप हो हर नाम,
0: सिमर सिमर सिमर सुख पावो,
1: आप जप हो अब रह नाम जपावो,
0: भगत पाए तरिये संसार,
1: बिन भक्ति तन हो सिसार,
0: सर्व कल्याण सुख।

0: कभू डोलै
1: सर्व कला कर खेल है खेल
0: मोल न पाया गुण है अमोल
1: सर्व जोत में जाकी जोत
0: धारे हो स्वामी ओत पोत
1: गुर प्रसाद भरम का नास
0: नानक दिन मह इहो विसास
1: संत जना का पेखन सब ब्रह्म
0: संत जना के हृदय सब धर्म
1: संत जना सुने शुभ वचन
0: धर्म व्यापी राम संग रचन
1: गिन जाता तिसकी ये रहत
0: सत वचन साधु सब कहत
1: जो जो होए सोई सुख मान
0: कर्ण करावन हार ब्रह्म जाने
1: अंतर बसे बाहर भी ओही
0: नानक दर्शन देख सब मोही
1: आप सत किया सब सत
0: प्रभु ते सगली ओत पात
1: तिस भावे ता करे विस्तार
0: तिस भावे ता एक अंकार
1: अनक कला लखी नह जाए
0: जिस भावे तिस लय मिलाए
1: कवन निकट कवन कहिए दूर
0: आपे आप आप भरपूर
1: अंतरगत जिस आप जनाए
0: नानक दे जन आप बुझाए
1: सर्व भूत आप बरतारा
0: सर्व नैन आप खनहारा
1: सगल समग्री जाका तना
0: आपन जा से आप ही सुना
1: आपन जानक खेल बनाया
0: आज्ञाकारी की नी माया
1: सबके मद अले पतौर है
0: जो कुछ कहना सो आपे कह
1: आज्ञा आवे आज्ञा जाए
0: नानक जा भावे तन लय समाए
1: इसते होए सो नाही बुरा
0: उरे कहो किने कुछ कराम
1: आपला करतूत अतनी की
0: आपे जाने अपने जी की
1: आप साच धारी सब साच
0: पोत पोत अपन संगराज
1: काकी गत में तो कही न जाए
0: दूसर होए तो सो जी पाए
1: का किया सब प्रवान
0: गुर प्रसाद नानक हो जान
1: जो जाने तिस सदा सुख होए
0: आप मिलाए लय प्रभ सोए
1: ओतन भंत कुलवंत पतवंत
0: जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत।

0: पार ब्रह्म निकट कर भेख
1: सास सास सिमरह गोविंद
0: मन अंतर की उतरे जिंद
1: आस अनित त्याग हो तरंग
0: संत जना की दूर मन मंग
1: आप छोड़ बेनती करहो
0: साधु संग गण सागर धरहो
1: हर धन के भर लेहो भंडार
0: नानक गुरु पूरे नमस्कार
1: खेम कुशल सहज आन

0: दया प्रवतारी
1: नानक ने भी के बहमारी
0: प्रभु की उस्तत करो संत मीत
1: सावधान एकाग्र जीत
0: सुखमनि सहज गोविंद गुण नाम
1: निज मन बसे सोत निदान
0: सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए
1: प्रधान पुरख प्रगट सब लोए
0: सब ते ऊच पाए अस्थान
1: बहुर न होवे आवन जान
0: हर धन खाट चले जन सोए
1: नानक जिसे प्राप्त होए
0: खेम शांत रिद नभ निद
1: बुद्ध ज्ञान सर्व सिद्ध
0: विद्या तप जो

तुदनो जति सति संतोखी गावन तुदनो वीर करारी गावन तुदनो पंडित पढ़नरखी सुर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मछ प्याले गावन तुदनो रतन उपाए तेरे अड़सड़ तीर्थ नाले गावन तुदनो जोध महाबल सूरा गावन तुदनो खाणी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तहारे सेई तुदनो गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर किते तुदनो गावन से मैं चित न आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देख कीता अपना ज्यों तिस दी वड्याई जो तिस भाव है सोई करसी फिर हुकम न करना जाई सो पातशाह शहा पत साहिब नानक रहन रजाई असा महला पहला सुन वड्डा आखै सब कोए केवड़ वड्डा डीठा होए कीमत पाए ना कहा जाए कहने वाले तेरे रहे समाए वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोई न जाने तेरा केता केवड़ चीरा रहाऊ सब सुरती मेरे सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई कहण ना जाई तेरी तिल वड्याई सब सत सब तप सब चंगियाईया सिद्धा पुरखा किया वड्याईया तुद बिन सिदी किनै ना पाईया कर्म मिले नाही ठाकर हाईया आखण वाला क्या बिचारा

सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा, हर त्याव हो संत हो जी, सब दुख विसार निहारा, हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा, तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाना, एक दाते एक भिखारी जी, सब तेरे चोज बिडाना, तू आपे दाता आपे भुगता जी, हों तुद बिन अवर न जाना, तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुणे आख बखाना, जो सेव है जो सेव है तुद जी, जर नानक तिन कुरबाना, हर त्यावै तुद जी, से जन जुग मैं सुखवासी, से मुक्त भय जन हर त्याया जी, तिन टूटी जम की फासी, जन निरभउ जन हर निरभउ त्याया जी, तिनका भउ सब गवासी, जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी, से तन जन हर त्याया जी।

तप तप जप भियंता तेरे अनेक पड़े बहु सिमृत शास्त्र जी कर क्रिया खड़ कर्म करंता से भगत।

जिसनों तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख बखाने। जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोई। तू कर कर वेखै जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सर वरड़ पहिल निवासा। पाणी पावक तिन्हें किया, पंकज मोह पग नहीं चाले। हम देखा तहें डूबी अले, मन एक ना चेत स मूड मना। हर बिसरत तेरे गुण गलियां रहाओ, ना हो जति सती नहीं पड़िया। मूर्ख मुगदा जन्म पहया, प्रणवत नानक तिन की शरणा। जिन तू नाहीं विसरिया, समहला पंजवा। पही प्राप्त मनुख देहोरिया, गोबिंद मिलन किए तेरी वरिया। वर काज तेरा कितै ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंग जाम लाग फवजल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया। कह रहाऊ जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साधन जाने हाँ हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। जप तप संजम धर्म ना कमाया,

अवतरम काल पाए कर बिशन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताई हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैंत जछन उपजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी शिवकन को शिव गुण सुख दियो सतरन को पलमो बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर असूला सब पर कृपा दृढ़ कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान घट घट के

मूड कछ भेद न जानत, महादेव को कहत सदा सेवो, निरंकार का चीनत न भेवो, आप अपनी बुद है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तोहे तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, के वे सजा प्रथम संसारम, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कई भूपा, अंडज जेरज सेतज कीनी, उत्पुज खान बहो रज दीनी, कहूँ फूल राजा हवै बैठा, कहूँ सिमट भयो संकर कैठा, सगरी सेठ दिखाई चंपब, आद जुगाद स्वरूप स्वयं पाव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखो बार सिख संघरों, दुष्ट जेते उठ बदुद पाता, सकल मलेश करो रण काता, जे अस तुझ तब शरणी परे, तिनके दुट दुगत हवै मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार त्याए हैं, ताके काल निकट न आए हैं, रक्षा हुए ताही सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाए निहार हूं, ताके ताप तन कमो हर हूं, हृदय सिद्ध

राम कली महला तीजा आनंद को ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माई सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गा बने आईया शब्दों तांगा वो हरि केरा मन जनी वसाया कहे नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहूं हर नाले हर नाल रहूं तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार यो करे तेरा कार्ज सब सवारना सबना गला समरत स्वामी सो क्यों मनो बसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहूं हर नाले सचे साहिबा क्या नाही घर तेरे घर तां तेरे सब कुछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सालाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सचे साहिब क्या नाही घर तेरे सचा नाम मेरा आधारू सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आई वसिया जिन इच्छा सब पजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु बिटो जिस दिया एह वडियाइया कहे नानक सुनो संतो शब्द रो प्यारो सचा नाम मेरा आधारू वाजे पंच शब्द तित घर सपागै घर सपागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत दवस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिन कहो से नाम हर कै लागे कहे नानक तै सुख हुआ तित कर अनहद वाजे।

थाल विच तन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका हुई उधारो यह वस्त जी नह जाई नित नित राखुर थारो तम संसार चरण लग तरी है सब नानक ब्रह्म पसारो श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जा तो नाही मैनो जोग की तोई मैं निर्गुण यारे को गुण नाई आपे तरस पयोई तरस पया मेहराम तो होई सतगुर सज्जन मिले आ नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थी वै हरिया तरस पया मेरा मत होई

जिंदड़ी तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज कीतियां हुई सेवावां प्रवान करन कीर्तन राही आप संगतां दियां सेवावां करदियां हुई फुलां दी खिमा बख्शिश करके अगे तो समर्थ बख्शनी हुण आप जी नूं ज्ञानी गुरसेवक सिंह जी कथा द्वारा निहाल करनगे। बुलाओ जी फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा। वाहिगुरु।

तत्व विचार यह मथुरा जगतारन कहो अवतार बनायो जपयो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो तरन गगन नव खंड महे जब जब तरन खगन नव खंड महे ज्योत स्वरूपी रहो पर पन मथुरा।

जैसे सूर सर्ब को सोख। महाराज कहिंदे सूर दा मतलब है सूरज। महाराज कहिंदे जिवें सूरज सारे रसां नूं सुका दिंदा है, तिवें ब्रह्म ज्ञानी मनुख सारे पापां नूं साड़ के सुवाह कर दिंदा है। सूरज जदों धुप पैंदी है तां ही कई फुल कई पौधे सूरज दे करके ही हुंदे ने, तां ही उहनां दे अंदर रस भरदा। जे सूरज ना निकले तां फसल खेतीबाड़ी आदि कितां किदां पक्के, उह पक नहीं सकेगी। मर कहिंदे ब्रह्म ज्ञानी दी दृष्टि भी इदां दी है। मर कहिंदे ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्ब को सोख। जिवें सूरज सारे रसां नूं सुका दिंदा है, तिवें ब्रह्म ज्ञानी मनुख सारे पापां नूं साड़ दिंदा है, ते पापां तों वी उह बचिया हुंदा है, ते जिहड़ा उहनां दी संगत कर लैंदा है ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਾਨ, ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਕ ਕਹੋ ਲਾਗੈ ਤੁਲ ਪਵਾਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਆਤਮਕ

किनारियों को पानी उछल के नीचे इधर उधर टोया विच गड़िया दे विच जा डिगया। थोड़ा पानी होन करके बड़ी देर तक खड़न करके उथे डंगर पशु फिरदे हन। ओ पानी बदबू मारन लग जांदा है, जी पैदा हो जांदे हन, होर कई किस्म दे नुक्स पैदा हो जांदे हन उस जल विच, जिसनू कोई पीण तां की उस दे नाल हाथ भी धोना पसंद नहीं करदा। सो क्यों ओ दरिया तो अलविदा होके अगर उस पानी नू कोई महापुरख कोई भला पुरुष उठा के उसी दरिया विच फेंक देवे सुट देवे, तां फिर ओ शुद्ध दा

का नाम देव जी ने किया है। और कुछ ना कर बस गां जिंदा कर दे, परमेश्वर ने कृपा की थी ते मरी हुई गां जिंदा हो गई, वच्छे समेत ते नाले दूध दिया।

करनी ए वशा के तुसा आप उत्ते बैठना है। नामदेव जी तुर पए नाल बादशाह दे दरबारी तुर पए। नदी किनारे भगत नामदेव जी बैठे ने।

कीमती से जा तुस बादशाह सलामत दी ए इच्छा ए कीमती से जा तुसा आप वर्तनी है संभाल के रखनी। नामदेव जी ने ओ कीमती से जा चुकी ते नदी विच सुट दिती। दरबारी वापस चले गए। बादशाह नु बेनती कीती, बादशाह भगत जी ने तुहाडी से जा पानी विच सुट दिती। बादशाह नु बुरा भी लगा, गुस्सा भी आया,

सवारे कोट तुरंग कुरंग सिकूल दुपौन के गौन को जात निवारे पारी पुजान के भूपली बिद न्यावत सीसना जात बिचारे एते पहे तो कहाँ पहे भूपत अंत कुनांगे पाए पधारे जीत फिर सब दे दिशान को बाज टोल मृदंग नगारे गुंजल गूड़ बजान के सुंदर सत है राज हजारे भूत पुख भवान के भूपत कौन कहीं जात बिचारे श्री वासरी भवान भजे बिनंत कौंत के ताप सधारे तीर्थ नहन दया धमदान सुसन जमने मनेक बसेख है वेद पुराण कथे कुरान जमीन जमान सुबान के पिख है कौने हार जती है तार सो सो बिचार हजार के देख है श्री भगवान पजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लिख है शोध सिपाह दुरंत दुबाह सो सासना दुर्जान दलेंगे पारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंख हल न हलेंगे तोर रीन मरोर मवा सुन मत मतंगन मान मलेंगे श्री पासी पान कृपा बिन त्याग जहान दान चलेंगे वीर अपार बड़े बरे यार अवचार सार गितार पशैया तोर तदेश मलिंद मवासन मत गजान के मान मलैया गड़गड़ान कतोड़ने हार सुबातन ही चक चार लवैया सहब श्री सब को सरनायक जाचक नेक सो एक दवैया दानव देव निंद साचर भूत पुख भवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब था पथ पेंगे पुन पर तापन बाढ़ जाए तुन पापन के भव पुंज खपेंगे सास मुंह प्रसन्न फिर जग सत्र स्वै लोग चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र निराहत भजोंतर लोको राज करेंगे कोट शनानक जाजक दान अनेक सोम प्रसाद परेंगे ब्रह्मेसर बिशन सच्ची पात अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्रीपत के प्रस हैं पाग ते नर फेर ना दे तरहेंगे कहाँ भयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे भगत ध्यान लगायो नाथ फिर लिए सास समुद्र लोग पर लोग गवायो बास कियो बख्यान सो बैठ कह ऐसे ही ऐसे सो बैस बतायो साच कहूँ सुन लियो सवै जन प्रेम कियो तनि प्रपायो कहूँ लै पहान पूतरियो सिर कहूँ लै लिंगर टकायो कहूँ लै खिरवाज दिशा मैं कहूँ पुछा को सीस नवायो कहूँ पुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान कुभेद न पायो कूर क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान कुभेद न पायो कव्यो बाच बेनती चौपाई पाशय दसवीं हमरी करो हद रक्षा पूर्ण होए जिनकी इच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो व्रत पारा हमरे दुष्ट सब तुम काबू आप हद मोहे बचाव हो सुखी बसै मोर परवार सेवक सिख सब करता रा मोर अच्छा कर दे करे ऐसा वैरण को संघरे है पूर्ण हुई हमारी आसा तुर भजन की रह प्यासा तुम्हें शाड कोई अवर न त्याहूं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सुतर हमारे मारी है आप हद मुजबरे है मरण कार का त्रास न वरे है उजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जो करो रचा राख लो मोरखने हारे सब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के

प्राकृत है। सर्व शब्दं एक शब्दं जी को जाने पियो, नानक ताका दास है। सोई निरंजन देव महला दूजा, एक कृष्णं सर्व देवा देव देवा ता आत्मा।

0: करे जित सर जाए सुध। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की
1: तुद्ध अगरदास हमारी जियो पिंड साहब कहु नानक साहब तेरी वड्याई कोई। वाहिगुरु बोलो जी, वाहिगुरु वाहिगुरु ओंकार, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय वार, श्री भगौती जी की पातशाही दसवें प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लीन त्याई। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासा हुई सहाय, अर्जन हर गोविंद नौ सिमराऊ श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याहिय। जिस डिठै सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिया कर नाउन दयावत आए। सब थाई हुई सहाय, दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सब थाई हुई सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलो जी वाहिगुरु। पंजां प्यारियां चहुं साहिबजादियां चालियां मुकतियां हठियां जपियां तपियां, जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई, तेग वाही देख के अंडठ कीता, तिना प्यारियां सियारियां दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने तरमें सीत ते बंद बंद कटाए, खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़ियारियां ना चढ़ाए गए, गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया सिखी के सां स्वासां ना निभाही, इन्हां दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। पंजां तख्तां सरबत्त गुरुद्वारियां दा ध्यान तरके बोलो जी वाहिगुरु। प्रथमें सरबत्त खालसा जी की अरदास है जी, सरबत्त खालसा जी को वाहिगुरु। वाहिगुरु वाहिगुरु चतावे, चतावन का सदका सर्व सुख होवे, जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रहा है। देग देग फतेह बिरद की पाए पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाय, खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु। सिखां नूं सिखी दान, केस दान, रहत दान, वेख दान, विसाह दान, भरोसा दान, दाना सिरदान, नामदान, श्री अमृतसर साहब जी इशनान, चौंकियां झंडे वंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पदा रखा, आप अकाल पुरख वाहिगुरु अपने पंथ दे सदा सही दातार जीओ श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया, खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे माण ताने ताने उटियां दी ओट, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी आप जी कृपा दयालता सदका, अमृत वेल दे दीवान गदरी बाबिया के इतिहासक स्थान गुरद्वारा साहिब स्टॉकटन विखे सजाए गए सजे दीवाना विच पंजा बाणियों का नितनेम वासा जी दीवार दे शब्द कीर्तन पावन बाणी का पाठ कीर्तन नितनेम करदे आं। बेअंत फुला अगों वास्ते सतगुरु जी उसमत प्रदान करने, दाराइयां संगतां दीयां सेवावां पिटावां हाजरियां प्रवान करनियां, गुरमत अनुसार संगतां दे काज रास करने, अमृत वेल दे दीवान मुख रखदियां संगतां वल्लों तिहाल कड़ा प्रसाद दी देख सजके हाजर दर प्रवान होवे, प्रवान प्रसाद संगत विच वरते जो छके आप जी दा नाम जपे, कृपा करो पातशाह जी द्वारा इस संगत नूं इलाही श्री मुख वाक बख्श के सुना के निहाल निहाल करो सही प्यारे मेल, जिना मेरा तेरा नाम चेता वे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दुहरा गया पही अकाल की, सब सिखन को हुक्म है गुरु, गुरु ग्रंथ जी मान्यो, जो प्रभ को मेर बोचा है, राज करेगा खालसा, खुवार हुए सब मिलांगे, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।